आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अप

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੇ ਸਾਥ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ, ਔਰ ਥਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਹੂੰ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਕੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਮਾ। ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆ ਆਓ ਗਾਓ ਚਲੇ। ਆਜ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਜਾਪੁਰ ਖੇਲਣ ਗਾਂਵ ਮਾ, ਜਹਾਂ ਆਜ ਹਮ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਓ ਥੋੜਾ ਸਾ।
1: ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਰਜਾਪੁਰ ਔਰ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਲਣ ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਵ ਇਕੱਠੇ ਆਏ 1983 ਮੈਂ। ਸਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਾਪੁਰ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਦੀ ਔਰ ਜਬ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਔਰ ਖੇਲਣ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤਮਾਈ ਗਾਂਵ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇਚਰ ਕੇ ਹੈ ਸਭੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ 8-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ।
0: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਕੈਂਟ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਮਾਂ? ਮੈਂ
1: ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਸੇ ਹੈ, ਖਾਏ ਕਮਾਏਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੜਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੋ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਸਭੀ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ, ਏਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਹੈ, ਅੰਟਾਲਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਾਂਵ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਤਾਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ 5-6 ਗਾਂਵ ਕੋ ਇਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਮਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਜੀਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਘਰ ਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਸੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਹਮਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹਮਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਮੇਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲੱਗ ਸੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੜੇਗਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਿਸ ਪੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਵਹੀਕਲ ਕਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਯਹਾਂ ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੇ 5-6 ਚੁਣ ਸੇ 10 ਗਾਂਵ ਪੜਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਆਏ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੇ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਕੇ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ?
1: ਹਮਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ।
0: ਜੈਸੇ ਘਰਾਂ ਮਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵਾਂ ਤੋ ਬੱਸ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ ਪੜਾ ਤੋ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜਹਾਂ ਵੀ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ?
1: ਸੁਵਿਧਾ ਤੋ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਵਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਜਦ ਉਸਮੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਤਬ ਚੱਲੇਗਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਵੀ ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਂ ਵਹਾਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ 1500-2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ, ਜਬਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਔਰ ਆਪਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ?
1: ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ।
0: ਤੋ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ?
1: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜੀ।
0: ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਕੀ?
1: ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੜਜਾ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
0: ਤੋ ਆਪਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਆਪ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂ?
1: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਤੋ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। बहुत ही दिक्कत है। पहली बात तो हमारे बच्चे इधर पढ़ने वास्ते जाते नहीं है तकरीबन, क्योंकि स्कूल जा जो वो भी 30 किलोमीटर से पहला नहीं पढ़ रहा कोई भी, और जो मान ले सरकारी काम है उसमें मजबूरी में जाना ही पड़ा। कोई अपने घर आते 2,000 रुपये खर्च कर जाओ, 2,500 खर्चो, जो मर्जी करो, और कोई पंजाब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं। सुविधा जो बुढ़ापा पेंशन उनमें बीमारी के लोग एक किस्म से भेदभाव हो रहा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2,700 रुपये होगी, यहाँ जी 1,500 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। मान ले जो भी विधवा वगैरह सारी पेंशन में ही फर्क है, और जो अपना एग्रीकल्चर का मान लो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार, उसमें भी फर्क है। पंजाब में तो नाम मात्र ही है सब्सिडी जिम्मेदार के लिए, सरकार पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क है अभी।
0: तो मतलब आपने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी गांव पंजाब में गया।
1: हाँ
0: तो जिस तरह यहाँ के बच्चे हैं, गांव के बच्चे, जिस तरह स्कूल में तो आसपास चल यहीं चले जा, तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते उन्होंने अम्बाला जाना पड़ा या कहीं डेरा बसी जाना पड़ा। तो कॉलेज में जाने वास्ते उनके पास कितनी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की, बस सर्विस कितनी, ऑटो सर्विस कितनी है कॉलेज में जाने वास्ते?
1: गांव से ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं। एक सवेरे एक टाइम बस आती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें ही कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ जो रह जाते हैं वे अपने व्हीकल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, और कोई साधन नहीं है। पंजाब सरकार का तो एक कोई भी नहीं, मतलब एक व्हीकल भी नहीं है अभी यहाँ भी यहाँ कोई आता हो। और पंजाब में ना ही बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉलेज 35 किलोमीटर है, बच्चा नहीं चाहता अभी। एक कॉलेज तो पढ़ रहा है 8 किलोमीटर, एक पढ़ रहा 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर क्यों जाएगा? तो तकरीबन 95% बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं अम्बाला कैंट में अपने। और हरियाणा सरकार को तो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा इन हिस्सेदारी तो हमारी पंजाब में है। हरियाणा को तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी कोई ट्रांसपोर्ट, मतलब 2 बजे या 1 बजे वापिस गाँव के लिए भी लगा दे, जैसे सवेरे 1 है तो उसमें हरियाणा के भी कई गाँव पड़ते हैं, ये बात नहीं है। पहले हम जाके भी आए एक दो जगह, आश्वासन दिया है, चलो भाई मतलब आम बंदा आवाज ही उठा सकता है, सरकार के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब भी हमारी तो एक रिक्वेस्ट ही है सरकार से, ज्यादातर हरियाणा सरकार से ही करते हैं हम, क्योंकि यही हमारा सारा लेन देन है और सारा कुछ यहीं से है। अभी हमारे बच्चों के लिए एक दो तीन टाइम और बस लगा दे तो थोड़ी सी इनको सुविधा हो जाएगी।
0: तो आपने जिस तरह बताया अभी मानू बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में सरकार से क्या निवेदन करना चाहा अभी सरकार हमारी किस प्रकार से सहायता कर सका?
1: देखो हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, यहाँ से बॉर्डर पे हमारा गांव है, और हम तो अपनी पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट ही करते हैं, और हरियाणा से भी, और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने नहीं कोई अपना ट्रांसपोर्ट का यहाँ से कोई सिस्टम कर क्या भी कोई, जिससे बच्चे स्कूल जा सका थोड़ा सा, मतलब जब बच्चे पढ़ाएंगे यदि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा पंजाब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया कहाँ तक है, और उनको उनका फर्ज भी है और हमारी मांग भी है। अभी ये कम से कम जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है वहाँ तक बस या कोई मिनी बस तो ऐसा कुछ हो जाए जहाँ से जायस का बंदा आसानी से कॉलेज अपना जो भी कचहरी का काम है। और हरियाणा से भी यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार से के कोई मतलब 2-3 टाइम बस और लगा दे, और इस जो रूट हमारा गांव जिस रूट पे पड़ता है इस पे आगे हरियाणा के गांव भी काफ़ी हैं, उन बच्चों को भी लाभ होगा, हरियाणा को भी, हमारा तो इसमें फायदा है ही है, हरियाणा का भी फायदा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है हमारी हमारे पूरे एरिए की केंद्र सरकार से ये है कि जो ये गांव है जिनके 3 पासे हरियाणा लगता है, हमारी बोली भी हरियाणा की है, सारा लेन देन जो भी हमारा बैंक का ला लो या अपनी फसल का ला लो सारा कुछ हरियाणा में है, हम सिर्फ पंजाब में सरकारी काम के लिए जाते हैं। इस का केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे 5-10 गांव जो से हरियाणा के पास पड़ रहे हैं, पास क्या है बिल्कुल अंदर बढ़ गए हरियाणा के, तो 6 गाँव तो इनको अगर हरियाणा में ले लिया जाए तो हमारा जीवन और मतलब सुखमय हो जाएगा। यही सारे गांव की भी मतलब पूरे एरिया की डिमांड है हमारी केंद्र से सरकार से, अभी हमें हरियाणा के साथ लिया जाए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, सरकार आपकी आवाज सुनागी और आपकी मदद करागी। आज हम बात करांगे गांव के जीवन के बारे में और मार आज का कार्यक्रम आओ गांव चले। तो गांव के बारे में और ज्यादा जानने वास्ते आज हम पहुंचे हैं गांव रजापरमा, जहां हम बात करांगे राम किशन जी ते और जिनकी उम्र हो रही 70 वर्ष। राम राम ताऊ।
2: राम राम जी।
0: और ताऊ ठीक ठाक?
2: ठीक सही।
0: तो ताऊ मैं आज तेरे यूं पूछना चाहूं भी जोन सा आज का गांव का रहन सहन है और जोन से हमारे पहला के टाइम मोए कराते उनमें कितना फर्क पड़ा?
2: हमारे टाइम में तो बेटा जब हम स्कूल में जाया करते थे साइकिल भी प्राप्त नहीं होती थी हमारे, हम पैदल जाया करते थे और यहाँ से गांव सरसेड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, हम वहाँ पर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। इसके बाद हम 5वीं से 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक हमने कहाँ पढ़ा है? सरसेड़ी में। सरसेड़ी में 10वीं क्लास जाने के बाद उससे आगे स्कूल नहीं था, फिर हमें अम्बाला कैंट पढ़ना पड़ा।
0: तो ताऊ मतलब तने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी हुई?
2: मैं 10+2 तक पढ़ा हूँ।
0: ठीक बात आऊ। तो 12वीं के बाद तने फिर कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू करी?
2: ना बेटे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढ़ सकता, ये 12वीं भी बहुत मुश्किल से की है, इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी। ये गांव बिल्कुल, यहाँ हर एक मकान कच्चे थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, फसलें नदी बर्बाद कर देती थी, यहाँ तो बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत किया हमने अपने टाइम में। आज के टाइम में बहुत सहूलियत है, गांव में सड़कें भी बन गई हैं, पक्के मकान भी बन गए हैं, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ तन्ने अपने बारे में बताया दिया भी गांव के माहौल में कितना फर्क पड़ा, तो इस माहौल के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम एक और ताऊ से बात करांगे। राम राम ताऊ। तो ताऊ आपका नाम क्या और आपकी उम्र कितनी हो रही है?
1: उम्र 74 साल, पूर्णचंद मेरा नाम है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ जिस तरह तेरी उम्र 74 साल हो रही, तो तन्ने बहुत पिछला टाइम भी देखा और जोन सा हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा यो भी देखा। तो ताऊ मैं तेरे यूं ही पूछना चाहूं भी तन्ने अपनी जिंदगी में कितना फर्क देखा, भी पहला तेरी जिंदगी कैसी थी और आजकल के मारे न्याणे की जिंदगी में कितना फर्क देख रहा? तो तन्नु वह टाइम अच्छा लगा था और यो टाइम बढ़िया लग रहा?
1: टाइम तो वह भी अच्छा था बेटे, यही अच्छा, थोड़ा हर चीज तो मिल जा, पहले तो कोई सामान इतना मिला था, कोई बहुत दिक्कत थी, मतलब रेते में जाना, रेते में आना, पानी में चलना सारा दिन, मैं नहीं बताऊं और क्या बेटे, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं।
0: ठीक बात आऊ। तो रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बताओ अगर श्रोता नु भी, तो खाने पीने का किस तरह बदल गया, हमारा पहनावा कितना बदल गया, अरे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर
1: बहुत ज्यादा ही बद गई तो बेटे, पहला कहा कपड़ा भी नहीं इतना मिला था, क्या एक कुर्ता तो थी मिल गई, 1-6 महीने वही आदमी पहरिया, पैर में जूती नहीं मिला थी, कहीं जहाँ देते तेरे भर के भाई किसी की मांग का जाना ये काम हुआ थे बेटे, यहाँ से पैदल जाना सीधा बेब्याल को, ये हाल थे, कोई सवारी का साधन नहीं था, कोई नई बात है और कुछ नहीं बेटे, जो पढ़ाई लिखाई है बताई है वही है बस।
0: तो पहला यातायात के साधन बहुत कम हुआ थे और बुजुर्ग जोन से हमारे पहले बंदे थे उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था।
1: यहाँ यहाँ बैठे यहाँ तो पानी की टक्कर लगती नदी की, ऐसे पानी फैलता था इसके गांव के चारों चिगिरता, ये सरसेड़ी परसेड़ी ये सब इधर अंटाड़ा सब में पानी घूमता, फसलें सब नष्ट हो जाती थी, खाने में कोई बहुत बहुत दिक्कत आती।
0: राम किशन ताऊ जी आपते पूछना चाहूँ भी जोन सा आपका गाँव आ राजा पर इसमें क्या खास बात अभी और गाँव आते अलग?
2: ऐसा जी, गाँव रजापुर जो है बिल्कुल छोटा सा गाँव है, बहुत अच्छे आदमी इसमें, कोई चोरी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, ये शरीफों का गांव है।
0: ठीक बात। तो मतलब थारा गांव शरीफा के गांव के नाम ते बजा?
2: बिल्कुल, रजापुर है ये, यहाँ पर पहले 2 आदमी होते थे, एक राजू एक खेलू, राजू ने रजापुर बसाई और खेलू ने खेलन बसाई है, गांव दोनों एक ही हैं।
0: तो इस गांव का यो नाम इस कर का पड़ा था, राजू के नाम से पड़ा था। तो ताऊ मैं तेरे ते और न्यू पूछना चाहूँ, जोन सा यो थारा गोवा राजा पर यो पंजाब मावा और हरियाणा थार ते 7-8 किलोमीटर दूर आ, तो इसके पीछे क्या कारण रहा भी यो पंजाब में लिया गया?
2: ये तो बेटे हमारी सोधी से पहले की बात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कागजों में पंजाब में शुरू से है ये गांव, ये तो बुजुर्ग जानते होने, लेकिन हमें हरियाणा में जितना फायदा है पंजाब से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हरियाणा में हम जाएंगे, पढ़ाई हमारी हरियाणा में, नौकरी हमारी हरियाणा में, ना है यहाँ पर बसें मिलेगी कोई, पैदल जाएंगे और टेम्पो में जाएंगे या कोई साइकिल पे जाएगा या थ्री व्हीलर में जाएगा, थ्री व्हीलर में बैठेगा 1.5 घंटा इंतजार करें पड़ेगी, जब तक उसकी सवारी पूरी नहीं होगी तब तक टेम्पू नहीं चलेगा। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी बस नहीं है। एक नारायणगढ़ से दिल्ली के लिए बस जाती है सुबह के टाइम 7 बजे, वो भी हरियाणा की है, लेकिन पंजाब की यहाँ पर कोई लोकल बस नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं है। पंजाब से हमें कोई भी इतना बेनिफिट नहीं है। यहाँ से इस गांव से कम 1000 बच्चा अम्बाला कैंट ड्यूटी पे जाता है प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहूलियत नहीं, ना हमारे को कोई नौकरी देता है पंजाब में, ना हमें कोई उनकी सहूलियत है। हरियाणा में ज्यादा हमारे बच्चे हरियाणा में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं जबकि पंजाब में नहीं कर रहे।
0: ठीक बात तो, मतलब सारे काम हरियाणा में ही है, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो,
2: हमारे काम हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे। पंजाब में तो ये नाम मात्र के हैं, हम नाम है कि हम पंजाब में रहते हैं।
0: ठीक बात बताओ, तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी भी, जोन सी हमारी पंचायत हुआ इसके जोन से पहला के फैसले हुए कराते और जोन से इब पंचायत चल रही इसके फैसले, इनमें कितना फर्क पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
2: पहले जो पंचायतें थी हमारी, तकरीबन ज्यादातर किसी की लड़ाई होगी झगड़ा हो गया फैसला यही हो जाता। ये डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम यहाँ के सरपंच थे राजा पर। लेकिन आज के टाइम में हरेक आदमी के अंदर आग इतनी बढ़ गई है कि वो हरेक आदमी थाने की तरफ भागता है। तो अब तो थाने में जाना पड़ेगा और थाना पड़ेगा यहाँ से दूर। पहले लारडू थाना था हमारा, अब हंडेसरे में पड़ता है। तो पहले में और अब में तो बहुत फर्क है। पहले 4 आदमी इकट्ठे होके पंचायत के आपस में यहीं पर फैसला कर देते थे, आजकल कोई किसी की मानता नहीं। सीधा थोड़ी सी बात हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, सीधा सरपंच को भी नहीं पूछेगा, वो पहले थाने में पहुंचेगा। आज का टाइम ये है।
0: तो तन्नू अपना वही टाइम पसंद आ तो नहीं, वो टाइम ठीक लगा?
2: बेटे हमारा टाइम तो वो भी ठीक था, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से टाइम ये भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी सहूलतें अब हो रही है। हम तो बरसात का टाइम आता था कोठे पे गारा लगाने के लिए परेशान हो जाते थे, किसी का कोला गिरता था, कच्ची छतें थी, डंडे डार रखे थे छतों पे, कड़िए के मकान थे। और आज एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कच्चा है, हरेक का मकान पक्का मिलेगा, हरेक के घर में फर्श मिलेगा। हाँ उस टाइम में ये था, कोई गरीब आदमी है उसके घर में दूध नहीं है, पड़ोसी से मिल जाता था। अब तो जिसके घर में खुद दूध है वो भी दूध नहीं पी सकता, वो डोलू वाला ले जाता है। तो टाइम तो वो भी अच्छा था, जनरेशन के हिसाब से ये भी अच्छा है।
0: तो ताऊ, तो आज के मारे जोन से युवा अपने बालक है न्याणे, उन्हु क्या कहना चाहगा भी जिस तरह गलत आदत में भी पढ़ रहे बच्चे और अपना पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान दे दे, तो उन्हु क्या संदेश देना चाहा तो भी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस मुकाम तक पहुंचना चाहिए?
2: बेटे हमारा टाइम ऐसा था, अगर किसी अपने बुजुर्ग के अलावा किसी और बुजुर्ग ने भी डांट दिया ना हमारे को, तब भी हम बोलते नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चे को हम खुद नहीं डांट सकते। पहले क्या था हमारे टाइम में, अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया हम सीधे उनसे डर के भाग जाते थे। अब किसके बच्चे कहने मानते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, तन्ने जानकारी दी और तो आज के युवा नु संदेश दे रहा भी अपने उसी टाइम पर चलना चाहिए जिस तरह हमारे पहला टाइम था, अपना कहना मान्य कराते ताऊ चाचे का बहुत डर होए कराता उस टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे, हम युवा के साथ बात करेंगे कि युवाओं का जीवन कैसा है और वे अपनी जिंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे। राम राम जी।
3: राम राम जी। नेहा जी, पहले तो आपको थैंक्स जो आप हमारे गांव में रेडियो के माध्यम से यहां तक आए। और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं गांव रजापुर पोस्ट ऑफिस केलन डिस्ट्रिक्ट मोहाली तहसील डेराबसी से रहने वाला हूं।
0: तो प्रवीण जी, जिस तरह आप एक युवा, तो मैं आज आपसे युवाओं के बारे में ही जानना चाहूँ भी जोन से मारे युवा उनका जीवन कैसा है और उन्होंने कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
3: कुछ नेहा जी, ये तो अलग अलग स्टेप होते हैं, युवाओं के अनुसार उसकी कैटेगरी, उसके परिवार के अनुसार वो डिप्लोप होती है। जैसे एक परिवार में पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर कल्चर पहली बैकग्राउंड खराब है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में समय लगेगा। और अगर मैं बात करूँ युवाओं की, हमारे गाँव में 80% युवाओं बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम पंजाब में एक 10वीं और 12वीं का स्कूल है, उसके बाद सारी एजुकेशन हम हरियाणा से डिप्लोम करते हैं। और एजुकेशन के बाद अगर बच्चा ग्रोथ करेगा, नौकरी पैसा जो भी लेगा वो भी 90% हरियाणा में लेंगे। या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम 80-90% प्राइवेट में करेंगे और वो भी मैक्सिमम हरियाणा में करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे गांव से जो डेराबसी कॉलेज है और कोई आसपास पंजाब का कॉलेज नहीं होगा डेराबसी, जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर है। अगर यही बात हम हरियाणा से बात करेंगे तो हमारे से 7 किलोमीटर दूर एसडी कॉलेज है, एक कॉलेज नहीं 4 कॉलेज है। इवन जो मेरी, जैसे बात करूंगा, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, माता जी, जो हमारी सिस्टर बुआ जी हैं जो पढ़ नहीं पाई, वो भी हमारे से 10 किलोमीटर कॉलेज आ रहा है, गर्ल कॉलेज, वहाँ स्टडी होप कर लेती वो अगर हमें सहूलत मिलती।
0: तो मतलब आप यूं कहना चाह रहे भी पढ़ाई लिखाई मानू यातायात की सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हुआ और इसकी वजह से शिक्षा शायद कहीं ना कहीं कम रहेगी।
3: यस मैम, जो आपने कहा है तो 100% यही कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो बच्चे रेडी हैं, पर जो उसको आवाज आएगा जो साधना 4 घंटे सर्वाइव करेगा वो कैसे करेगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने का कारण भी मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा पंजाब का उसको पास लेना पड़ेगा, जो 2 सरकार का गेट पास लगेगा तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है, जिसके कारण कोई प्राइवेट भी उसमें बस की सुविधा नहीं दे पाएगा। अगर सिंगल होता तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कम लगेगा और जिसके कारण सुविधा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, लोकल है तो अपने पास किसी को गाड़ी या किसी को बाइक है, वो अपनी साधन से जो मर्जी जाए, वो तो उसके पेरेंट्स के बदौलत बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
0: तो आप सरकार से यूं ही कहना चाह भी मानो शिक्षा प्राप्त करने वास्ता साधन भी मिलने चाहिए और हमारे आसपास भी कोई कॉलेज होना चाहिए।
3: राइट मैम, सारे कॉलेज हैं, एसडी कॉलेज है, जीएमएन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्यागल कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, अग्रसेन कॉलेज है, 7 कॉलेज गिनवा दिए मैंने 8 किलोमीटर के अंदर, और पंजाब के अंदर एक कॉलेज है डेराबसी 35 किलोमीटर की दूर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब दोबारा आओ प्राइवेट सेक्टर की बात, अगर मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से मेरे 6 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 400 कंपनी है, कोई गैस की, कोई लोहे की, कोई साइंस की, तो मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पैदल भी जा सकता हूँ अगर घर से कमजोर हूँ, और उसके बाद 2000 की साइकिल लेके भी जा सकता हूँ। बट पंजाब सरकार में मैं नौकरी कहाँ करूँगा, 40 किलोमीटर दूर डेराबसी से इंडस्ट्री एरिया लगता फेस पे, ट्रिब्यून चौक पे, और यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर, मुझे आने जाने का बताओ कैसे करूँगा मैं।
0: तो आपकी सरकार से क्या मांग, आप क्या गुहार लगाना चाहें सरकार ने?
3: देखो मैं तो दोनों ऑप्शन बता दिए आवाज के जरिए, आपके रेडियो के जरिए भी। पहला ऑप्शन ये, या मुझे कॉलेज के पास ले जाओ मेरे बच्चों को ताकि वो स्टडी कर लें, नहीं ले सकते मुझे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं एजुकेशन खुद ले लूं। दोनों सरकार के पास है और केंद्र सरकार के हाथ जोड़ निवेदन करूंगा मैं कि जो ऑप्शन सही लगे वो मुझे एग्री होना चाहिए। अब थाने कचहरी की बात करूं, जैसे सरपंच साहब ने ओवरऑल कवर कर ही लिया मेरा, अगर मेरी डीएल या आरसी कोई भी चीज बनवानी पड़ेगी मुझे डेराबसी जाना पड़ेगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अगर यही चीज मुझे बनवाने के लिए ये 6 किलोमीटर दूर है, मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और एक दिन की 400 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैं आसानी से जा सकता हूँ लंच टाइम में भी, क्योंकि मैं तो जॉब फैक्ट्री में कर रहा हूँ ना, कंपनी में एक छोटी सी जॉब, तो लंच टाइम का पीरियड होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मैं कचहरी में जा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों अफसर सरकार के पास है देखो, और हम यहाँ बैठे हैं और आवाज केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ऑलमोस्ट पहुंच चुकी होगी। अगर मुझे गांव के अंदर एक नाला बनवाना पड़ जाए, मेरी सरपंच सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई ना करे, मुझे एमएलए के पास जाना पड़ेगा ना। एमएलए कहाँ बैठता है मेरा, चंडीगढ़ डेराबसी, वो हमने आवाज आप तक पहुंचाई थी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा निकले और हम आगे बढ़ने की बात करें। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है भी, हम आगे जब बढ़ेंगे, जब देश हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी सरकार कोई निष्कर्ष निर्णय लेगी, हरियाणा ले या पंजाब ले, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं सर्वाइव करेंगे, अगले 70 साल भी आप आ सकते हैं। जब मैं 70 साल कहूँगा तो आप मुझे यही क्वेश्चन करना और मैं यही आंसर दूँ सेम जो मेरे बाबा जी ने दिया और जो सरपंच साहब ने दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने जो इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया और जो उनसे देश के युवा उनके बारे में भी मैं किस तरह आगे बढ़ सका।
3: देखो देश तो आगे आज भी बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा था, हमारा गाँव आगे पहले भी नहीं बढ़ रहा तो आज भी नहीं बढ़ रहा। पहले बड़ा होता तो बाबा जी बोलते बड़ा हुआ है, उसके बाद 20-40 साल का गैप सरपंच साहब बोलते और मैं भी सेम बोल रहा हूँ और मेरे आने वाले बच्चे भी यही क्वेश्चन करेंगे।
0: प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे से बताया, अभी मन यो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो इसका हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे भी जो आपकी दिक्कत है वह सरकार सुना और जो भी सरकार उसका फैसला लेवागी तो आपके और जिस तरह हम यहाँ आपके गोमाए तो मारिया जोनसी आने की यहाँ वजह व सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू नेहा जी, जो आपने कहा देखो सफल तो जब भी होगी, जब आवाज उठाएंगे, आपका नाम ही पहले आवाज है, आवाज उठेगी तो वो कुछ ना कुछ ले ही होगी। डिसीजन। और ये निष्कर्ष मेरा नहीं है, विलेज राजापुर से मैं हूँ, मेरे पास वाला गांव खेलन है और उससे पास वाला अंटाला, मालन, जोधगढ़, इवन सारंगपुर, ये सारे के सारे 6-7 गांव हैं जो हरियाणा का बिलोंग करते हैं। और ये मेरा मतलब एक मेरी तकलीफ नहीं है, 7 गांवों की सेम यही है। आपकी आवाज़ उठेगी, आपकी आवाज़ की सुनवाई होगी तो ये 7 गांव आपका एहसान मंद रहेंगे पूरी लाइफ। हम भी अगली पीढ़ी को ये बोलेंगे भी आवाज़ से हमारे पास आया और हमारी आवाज़ केंद्र सरकार को गई और उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब के एक गांव रजापुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के पंच और सरपंच, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में।
4: नमस्कार जी, मैं गांव रजापुर से और राज सिंह बोल रहे हैं, सरपंच से तहसील डेरावासी जिला मोहाली।
0: सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय कौन सी फसलें लग रही हैं और क्या कृषि के लिए तैयारी हो रही है?
4: मेरे गांव में जीरिया लगी हुई है अभी और चरी बाजरा है जो भैंसों के लिए और गन्ना है, बस मुख्य फसलें यही हैं ज़्यादा।
0: और जैसे फसलों के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो पानी की क्या सुविधाएँ हैं आपके गाँव में?
4: गाँव में किसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने वेल लगा रखे हैं और एक सरकारी बोर है, वो भी बिना देख रेख के ही चल रहा है रबरों से, बाकी कोई नहरी पानी नहीं है। जैसे पंजाब एक खुशहाल प्रदेश है, यहाँ से कोई नहरी पानी का कोई कभी देखे ही नहीं, किसी ने कभी नहरी पानी का होता है। और हमारे साथ तो यहाँ से बहुत ही सरकारों ने पहले से वो कह दें तो सौतेला व्यवहार कर रखा, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो उनसे जो मर्जी को हाल हो, नहर भी आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं।
0: जैसे अभी बारिश के मौसम में काफ़ी सारे गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे, तो उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आपके गांव को कोई दिक्कत आई?
4: बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, गाँव में पानी भी बढ़ा है और डांगरी नदी ने भी बहुत मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उसका बहुत नुकसान कराया है। तकरीबन 40-50 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है, जो बुजुर्ग बोल रहे हैं इससे पहले तो कभी इतना पानी आया नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे इसको बात न हो, चाहे आप काट भी दियो, मतलब कोई वो नहीं है, जो सच्चा है तो वो सच्चा है। इब की बार इस बरसात में जो अपना महेशनगर का पुल है उसने डुबोने का काम कराया है, जो अपना सरसेड़ी में पानी बढ़िया वो पुल के कारण बढ़िया है। आप मतलब सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए, उसके मैंने उसके नीचे जाके खुद देखा है, उसके 8 पिलर हैं, मतलब 8 दरवाजे ला लो आप, उन 8ों में से 4 बंद है और 4ों में का पानी निकलता है और 4 बंद हैं, तो पानी तो कहीं ना कहीं रास्ता चहेगा। वहाँ पानी पूरा ना निकलने के कारण जो सुसेड़ी में पानी बढ़िया है वो तो सारा वहाँ की नाकाम भी है, वहाँ से निकासी बंद हो ही है, वो सरकार का काम है देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये मेरी मतलब आवाज़ ना काटा तो आप बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। पूरी हमारी टेंट की अंबाले की इंडस्ट्री डूबी है इसी के कारण, 20-25 गांव जो डांगरी का तकरीबन 3 इंच से पानी इधर से गया, 1 इंच से पानी इधर गया।
0: तो इस वजह से गाँव के कितनी प्रतिशत जमीन और फसलें प्रभावित हुई?
4: मेरे गांव में तकरीबन 30% फसलों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 15% जमीन खराब हुई है जो खेती के लायक रही नहीं है।
0: तो जैसे कि आपने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, तो इसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त करवाई गई है?
4: नहीं, अभी तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं कराई गई है। पहले भी जो अपनी कणक की फसल में बरसात हुई थी तब भी सरकार ने फार्म वगैरह भरवाए थे, कोई मुआवजा नहीं दिया और अब फिर सरकार ने फार्म भरवा रखे हैं जिसका नुकसान हुआ है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे देखो सरकार क्या करती है।
0: अब हम बात करते हैं इस गांव से जुड़े स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में, तो पहले हम यहाँ के पंच से पूछना चाहेंगे कि इस गाँव में क्या क्या स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ उन्हें मिलती हैं।
5: नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ का पंच हूँ जी। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कोई नहीं है जी, यहाँ सिर्फ यहाँ से पहले भी जिस सरपंच साहब कह चुके हैं, यहाँ से सरकारी अस्पताल डेराबसी पड़ता है जी 40 किलोमीटर, और हमारी तो सारी आबादी यहाँ की गाँव की सिविल हॉस्पिटल पर ही डिपेंड करती है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, यहाँ सिर्फ हरियाणा पर ही डिपेंड है जी।
6: इस बारे में सरपंच जी आपके क्या विचार है?
4: जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सारी इसमें सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं भी एक देश कैसे हुआ, ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब सेंटर सरकार की स्कीम है, बोल रही है कि भी कहीं भी इलाज कराओ। और हम पंजाब में हैं, हमारे से नज़दीक पड़ता है हरियाणा का हॉस्पिटल, हम वहाँ जाते हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, तो हम कहाँ जाए करके बहुत मुश्किलें। और पंजाब सरकार आई है कि मतलब दिल्ली का मॉडल लेके आई थी कि यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर से इधर से कोई अब तक खुलिया नहीं है। मतलब लालडू अपना हॉस्पिटल एक छोटा सा यहाँ पे अंटाला में है, अंटाला भी 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं अब तक हैं, कोई मरीज मतलब जाएगा तो उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसको हरियाणा में आना पड़ेगा, वो क्यों जाएगा वहाँ से उल्टे पास से।
6: तो आप हमारे रेडियो के माध्यम से दोनों सरकारों को और केंद्र तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं?
4: मैं तो ये संदेश क्या, हमारी तो प्रार्थना है सरकारों से, अभी गरीब मार ना करें, अमीर तो अपना इलाज करा लेगा, पैसे देके कहीं भी करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो तो अपने घर बैठा बेफिक्र होगा, अभी मेरे पास तो कार्ड है और मेरा इलाज हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो कहाँ एट ए टाइम उस टाइम मरीज को संभाले या पैसा देखे, कहाँ क्या करेगा वो। मतलब मेरी तो यही है प्रार्थना कि जो पंजाब का आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा में भी चले, यूपी में भी चले, दिल्ली में भी चले, जिससे अपना बीमार आदमी अपनी दवा पुट्टी करा सके।
6: आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या कोई सुविधा आप चाहते हैं सरकार के द्वारा आपको दी जाए?
4: अगर जैसे हम पंजाब में हैं, लास्ट गांव है, यहाँ से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए जिससे मतलब फर्स्ट एड मिल जाए बंदे को, थोड़ा फिर मतलब राहत मिले आदमी, फिर अपना कहीं भी इलाज करा ले, ये मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है यहाँ पे।
6: जैसे इस वक्त हरियाणा में डेंगू के केस और पंजाब में डेंगू के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आपके इस वक्त आपके गांव में क्या स्थिति है?
4: बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब 100-150 मरीज पड़े होगा हॉस्पिटल में, और मैंने एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फोन भी किया है, ऐसे ऐसे करके मेरे गांव में पड़े हैं मरीज, कोई मतलब स्प्रे करा दे या कोई दवाई का इंतजाम कर दे कुछ भी, मतलब अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पूछ सुध लेने आया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहीं बैठे रिपोर्टें दे देते हैं, सब ठीक है यहाँ पे।
6: आप इस समस्या से इस वक्त कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं खुद ही, और क्या क्या चीज़ें आपने अपनाई हैं?
4: समाधान तो कुछ नहीं है जी, यही अपना हरियाणा के हॉस्पिटलों में पड़े हैं बंदे, अपना इलाज करा रहे हैं, अपने मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना।
6: तो ये थे रजापुर गांव के सरपंच, जिनसे हमने बात करी और जाना किसानी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी।
7: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, रेडियो वितस्ता 90.0 FM से, और आज हम आधिकारिक रूप से आए हैं गांव रजापुर में, जो तहसील डेराबसी पंजाब राज्य में पड़ता है। ये गांव अंबाला कैंट, जो हरियाणा में पड़ता है, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने आज गाँव के अलग अलग लोगों से बात की, जो अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और जो लोगों से हमने बातचीत की उससे हमें एक अलग ही एक तस्वीर सामने आई कि एक गांव जो किसी राज्य के बॉर्डर पर है और दूसरे राज्य के नज़दीक है, उन लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऑफिशियली कोई काम करना पड़ता है तो उनको 35 किलोमीटर दूर या तो डेराबसी जाना पड़ता है या उनको 60 किलोमीटर दूर मोहाली जाना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ पर अस्वस्थ होते हैं तो इनके लिए सबसे नज़दीक हरियाणा में जो अंबाला कैंट के अंदर हॉस्पिटल है वो आता है, उनको वहाँ जाना पड़ता है जो केवल 7 या 8 किलोमीटर दूर है। जहाँ तक हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हमने की, पंजाब सरकार की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ के लोग अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जो कोई इनको काम करना है, चाहे इनकी बच्चों की पढ़ाई है, चाहे इनका रहन सहन है, चाहे इनके लिए घरों के लिए सामान लाना है या जमींदारी के लिए कोई सामान लाना है, तो ये निर्भर पूरी तरह से हरियाणा राज्य के जिला अंबाला पर है। इन लोगों की बात हमने आज सुनी है, रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बात पंजाब सरकार तक देंगे, हरियाणा सरकार तक देंगे और केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक जरिया है जिस जरिए के माध्यम से हम लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकारों तक पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग कहते हैं कि आज से 70 साल पहले ये गांव वैसा ही था और एक युवा जो 30 या 35 साल का है वो भी यही कहता है कि आज भी गांव वैसा ही है, और उनका कहना है कि अगर हमारा बच्चे से कल आप पूछोगे 15 साल 20 साल के बाद वो भी यही बात कहेंगे, तो ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव के बारे में सोचे, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज हमें इतना सारा समय दिया, आप सभी लोगों का रजापुर गांव से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

राजेंद्र कृष्ण फिल्मी दुनिया के मशहूर मारूफ गीतकार रह चुके हैं। गीतकार राजेंद्र कृष्ण दुगल का जन्म 6 जून 1919 को जालपुर जतन, जो अब पाकिस्तान का इलाका है, हुआ था।

शुरुआती दिनों में म्यूनिसिपल ऑफिस शिमला में एज ए क्लर्क के तौर पे काम कर रहे थे। फिर दरमियान सन 1940 में मुंबई का रुख किया। फिर जनता के लिए

राजेंद्र कृष्ण ने एज ए स्क्रीन राइटर के तौर पे काम किया और फिर गीतकार के तौर पे पुरानी फिल्म जंजीर जो सन 1947 में रिलीज हुई थी। बहनों भाइयों, सन 1950 से सन 1970 राजेंद्र कृष्ण गीतकार के तौर पे काफी मकबूल रहे।

फिल्म बड़ी बहन सन 1949 में, अनारकली सन 1953, नागिन सन 1956 में, पड़ोसन सन 1968 में। इन फिल्मों में गीतकार के तौर पर राजेंद्र कृष्ण अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहे।

देश प्यार के गीत के लिए सुनो सुनो ए दुनिया वालों, रफी की आवाज में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद पूरे भारत में जबरदस्त मकबूल हुआ।

संगीतकार श्री रामचंद्र और मदन मोहन के साथ राजेंद्र कृष्ण ने बहुत ज्यादा काम किया।

राजेंद्र कृष्ण घुड़सवारी और अच्छा खाना खाने के शौकीन थे। सन 1965 में आई फिल्म खानदान के एक गीत तुम ही मेरी मंदिर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।

राजेंद्र ने लगभग 18 तमिल फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। सन 1970 में घुड़सवारी के कंपटीशन के दौरान 4.6 मिलियन रुपए राजेंद्र कृष्ण ने ये रकम जीती थी। राजेंद्र कृष्ण ने जाने माने संगीतकारों के साथ काम किया था। श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन, रवि, राजेश रोशन, मदन मोहन, हेमंत कुमार, सज्जाद हुसैन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, एस मोहिंदर, चित्रगुप्त, सलील चौधरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उनके मकबूल गानों में शामिल हैं फिल्म जेलर से हम प्यार में, फिल्म बड़ी बहन वो पास रहे, ये जिंदगी फिल्म अनारकली, शाम ढले फिल्म अलबेला, मेरे पिया गए रंगून फिल्म पतंगा और फिल्म छाया इतना ना। इसके अलावा जैसे सैकड़ों फिल्मी गाने हैं जो आज तक पूरी शिद्दत के साथ जिंदा है। राजेंद्र कृष्ण ने लगभग 90 फिल्मों के लिए 350 गाने लिखे। उनके सदाबहार गानों की एक झलक।

0: 23 सितंबर सन 1987 मुंबई में राजेंद्र कृष्ण ने दुनिया को अलविदा कहा।
1: मुझे जब जब बहारों का,
0: पर ये भी अपनी जगह सही है, गीतकार राजेंद्र कृष्ण कभी मरते नहीं हैं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आज का टॉपिक है, माफी मांगना आसान है, गलती न करना मुश्किल। नकारात्मक व्यवहार विकृति हो सकता है और पक्की सोच का नतीजा भी। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका साथी बिना किसी आत्ममंथन के अपना पक्का नकारात्मक रवैया बदल लेगा, तो इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। आज कई रिश्तों में ये एक आम रवैया बनता जा रहा है, पहले गुस्सा, फिर बदसलूकी और बाद में माफी। देखने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब गलत व्यवहार को बिना सवाल किए बार बार स्वीकार कर लिया जाता है, तो सामने वाले को ये महसूस होने लगता है कि उसका व्यवहार चल जाएगा। इससे रिश्ता एक के लिए घुटन और दूसरे के लिए मनमानी बन जाता है। इस व्यवहार से यूं निपटे, सबसे पहले सही समय चुनना जरूरी है। गुस्से के समय बात करने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए शांत माहौल में अपनी बात रखें। गलत व्यवहार को सीधे पहचाने और बताइए कि क्या गलत था। इसमें सामने वाले को स्पष्ट समझ में आता है, जैसे खाने में नमक कम होना बहुत छोटी बात है, इस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना गलत है और इस बात से मुझे दुख हुआ। सिर्फ सॉरी स्वीकारने के बजाय स्पष्ट कहे कि बदलाव जरूरी है, क्योंकि माफी तभी मायने रखती है जब व्यवहार में बेहतरी दिखाई दे। बदलाव की पहल कैसे करें? बात टाले नहीं, सही समय पर चर्चा करें, 24 घंटे के अंदर शांत तरीके से बात करें। गुस्से में जवाब देने के बजाय थोड़ा रुक रुक कर सोचे और फिर प्रतिक्रिया दे, स्पष्ट परिणाम तय करें। जैसे गलती बार बार हो रही है तो तय करें कि आगे क्या कदम उठाएंगे। जरूरत पड़े तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए अगर समस्या बार बार दोहराई जा रही है तो किसी काउंसलर या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेना सही कदम हो सकता है। खुद में भी लाइए बदलाव, अपने लिए खड़े होना सीखिए, क्योंकि हर बार गलत व्यवहार सहना आपका आत्मसम्मान कम करता है। गलत व्यवहार पर चुप रहना उसे बढ़ावा देता है। अच्छे इंसान और छवि बनाने के लिए दिखावटी व्यवहार करने वाले में अंतर समझे। आखिर क्यों सहती है महिलाएं ऐसा व्यवहार? किसी भी टॉक्सिक पैटर्न को तोड़कर बाहर निकलना इतना सरल नहीं होता है। इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारण होते हैं। जब साथी बार बार आपसे गुस्से का दोष महिला की किसी छोटी सी गलती पर मोड़ देता है, तो महिला को लगने लगता है कि शायद गलती उसी की है और उसे ही सुधारनी है। लोग क्यों कहेंगे, महिलाओं को थोड़ा बहुत से सहन करना ही पड़ता है। जैसे रूढ़िवादी सोच महिलाओं को चुपचाप सहने पर मजबूर करती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना भी एक बड़ी बाधा बन जाता है। भविष्य की चिंता व बच्चों की सुरक्षा का डर उन्हें यथास्थिति बनाए रखने पर मजबूर करता है। यदि किसी ने बचपन से अपने घर में इसी तरह का माहौल देखा है, तो उसे ये व्यवहार सामान्य लगने लगता है। समझना जरूरी है, अगर सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा आपने शुरू में समझा था, तो इसे स्वीकारना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना रखें और किसी को परफेक्ट या देवता मानने की गलती ना करें। इंसान को उसकी असलियत में स्वीकार करके ही रिश्ते के साथ चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि आपसी सम्मान व जिम्मेदारी से चलता है। ये था आज का रेडियो पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक हमें भेजिए 7056413010 पर। नंबर एक बार रिपीट करती हूँ, 7056413010। नमस्कार।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकज़ा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए।

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। मिटता रहा बनता रहा, कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उरका नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक है वफा। एडिट किया भारत सपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।
1: वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक जज्बा है जिसे निभाने वाले कम होते हैं और आजमाने वाले हजार। कभी ये मोहब्बत का रूप लेती है, कभी जुदाई का दुख। आज पहलू और गीत में चलिए महसूस करते हैं वफा के हर पहलू को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं, मोहब्बत तो निभाने का नाम है। वो एक वादा जो हर मोड़ पर साथ निभाए, कोई चाहे मिले या ना मिले, पर वफा अमर रह जाती है।

जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो बेवफाई के बाद भी वफा करते हैं। किसी की यादों में जीना भी तो एक तरह की वफा है, जो सिर्फ मोहब्बत करने वाले समझ सकते हैं।

कुछ मोहब्बतें सिर्फ जुदाई में जीती हैं, कभी एक आंसू बनके, कभी एक कहानी बनके, पर वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत को याद करते हैं।

कोई छोड़कर भी चला जाए तो भी वफा करने वाले वफा निभाते हैं। उनके लिए मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, किसी की यादों में जीना भी है।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक रोशनी है जो दिल से दिल तक जाती है। जिसे सच में प्यार होता है वो हर मोड़ पर साथ निभाता है। जो दिल से वफा करते हैं वो फासलों से नहीं डरते। एक सच्चा आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो वफा का हकदार भी बनता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि निभाना होता है।

कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां जुदाई में लिखी जाती हैं। दूर रहकर भी एक दूसरे की यादों में जीना भी तो वफा है। कई बार दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल तो एक सा धड़कते हैं। सच्चा प्यार चाहे जितना भी दूर चला जाए, वफा का एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि मोहब्बत एक बार होती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।

वफा सिर्फ उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई साथ हो। कई बार बेवफा होने वाले भी यादों में वफा छोड़ जाते हैं। जो सच्चा मोहब्बत करता है वो धोखा मिलने के बाद भी वफा करता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत होती है। वो दुख से गुजर सकता है मगर अपनी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि काश वफा का सिला भी वफा होता।

वफा सिर्फ आशिकों का सिलसिला नहीं, दोस्ती का फर्ज भी होता है। दोस्त वो जो खुद भले ही टूट जाए मगर दोस्ती का वादा न तोड़े, जो अपनी खुशी से पहले दोस्तों का सोचता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती एक मिसाल है जिसमें सिर्फ वफा का दामन पकड़ना पड़ता है। जिसने एक सच्चा दोस्त पा लिया उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जीत लिया, वो रिश्ता जो न खून का मोहताज है ना किस्मत का।

वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक कुर्बानी भी है। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को भूल जाना, कभी मोहब्बत में खुद को मिटा देना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने प्यार से सच्ची वफा हो। मोहब्बत चाहे कमजोर कर दे, मगर वफा इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि जो दिल से चाहता है वो अपने प्यार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है।

वफा सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार भी एक तरह की वफा होती है। किसी की एक आहट पर जीना, किसी की एक मुस्कुराहट के लिए साल गुजार देना, कभी वक्त गुजर जाता है मगर इंतजार खत्म नहीं होता। वो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, किसी के लौट आने का भी होता है।

वफा सिर्फ दुख का सबब नहीं, एक सुकून भी है। जब कोई दिल से मोहब्बत करता है तो उसके साथ एक अजब सी तसली होती है। कोई चाहे मिले या ना मिले, मगर वफा का एहसास दिल को सुकून दे जाता है। वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस मोहब्बत को इबादत की तरह निभाते हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वफा दुख नहीं देती, सिर्फ एक गहरा सुकून देती है, क्योंकि प्यार की असली जीत मिलने में नहीं, वफा निभाने में होती है।

ये था पहलू और गीत वफा के नाम। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ और एक नए गीत के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किरणी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक था वफा। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। लेके आया हूं कार्यक्रम पहला प्यार का अंक दो। जिंदगी का पहला प्यार कौन भूलता है? ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से ज्यादा चाहता है, उसकी पसंद, उसकी ख्वाहिशों में खुद को भूल जाता है। हर जगह हर पल उसका ही चेहरा नजर आता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर दिल मुस्कुराता है। दिल बात करने से पहले सोचता है कि क्या कहना है, बात कहने के बाद भी कुछ कहना रह जाता है। होता है इतना खूबसूरत पहला प्यार, फिर भी न जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है। जब भी आता है जुबां पर नाम उसका, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। तसल्ली होती है दिल को कि कोई तो है अपना, जो हंसाते हुए भी अपनी यादों से रुला जाता है।

पहले प्यार से कोई परिचित ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अमूमन हर चीज का कुछ न कुछ विकल्प मौजूद होता है, लेकिन पहले प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। युवावस्था में जीवन हमें जहां ले जाता है हम वहीं चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। छोटी उम्र में हम परिवार की गतिविधियों में बंधे होते हैं। परिवार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही हमें जीवन जीना होता है। लेकिन पहले प्यार में हम अपने से निर्णय लेते हैं।

जीवन में किसी घटना का होना केवल एक ही बार होता है, जिस वजह से उस घटना की याद अविशेष रूप से स्थान बना लेती है। ठीक उसी तरह आपका पहला प्यार भी है। आपका पहला प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। कारण यह है कि आपका पहला प्यार है। पहला प्यार हमेशा आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पहला ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में आपको किसी से और कितना गहरा प्यार हो रहा है। हम जब भी अपने आज को देखते हैं तो हमें अपने सुनहरे कल की याद जरूर आती है।

जिस मंजिल को ढूंढता था कभी, शायद तुम वही हो जिसके दुपट्टे में उंगलियां फंसाकर जिंदगी गुजर जाए, शायद तुम वही हो जिसके सपने मैंने भोर तलक देखे हैं, शायद तुम वही हो। सोचता हूं हर बात उससे आज कह दूं, पर कैसे, निगाहों की जुबान नहीं आती, मुझे सच है ये, मेरे दिल की धड़कनों से तू अपनी हर बात पूछ ले। लड़कपन की वो सारी नादानियां चाहता हूं, छूट गए जो सपने उन्हें तेरे संग जीना चाहता हूं, तेरे इर्द गिर्द आवारा हवाओं सा घूमना चाहता हूं, तेरी नींदों में हर रोज मैं जागना चाहता हूं। निगाहों की जुबां नहीं आती, मुझे सच है ये, खामोश रहकर भी हर बात तुझसे कहना चाहता हूं। तुझसे हर सुबह हो मेरी, सांझ भी तुझसे हो, उथल पुथल हो चाहे जिंदगी, पर तेरे संग आराम सा हो, बैठी रहे तू संग मेरे, बाहों में डाले हाथ, तेरी आंखों के समुंदर में डूबकर हो जाए शाम। कुछ ख्वाब अधूरे हैं मेरे जो तेरे संग मुझे जीने हैं, निगाहों की जुबान नहीं आती, मुझे सच है ये, मेरे दिल की धड़कनों से तू अपनी हर बात पूछ ले।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहला प्यार अंक दो, भरत सोपोरी के साथ। और सुनाते हैं आपको एक कविता और एक मनमोहक प्यार का गीत। कविता को आवाज दी है आरजे सेजल ने।
1: एक प्रीत की कहानी है, ये बात थोड़ी सी पुरानी है। मेरा पहला प्यार था जो अब भी मेरी जुबानी है। यूं तो थी सिरफिरी मैं कम नहीं, जिद भी उसकी गुमानी थी। लड़ती थी झगड़ती थी, अजीब सी हमारी दोस्ती थी। जब मिली थी उससे ना बात उसकी कोई भी मानी थी। धीरे धीरे जाने क्यों अब उसकी आदत सी हो गई थी। आंखों से दिल पढ़ना हाँ माना शायरी पुरानी थी, पर सच मानो झांकूं उसकी आंखों में तो बस मैं और वो, बाकी दुनिया अनजानी थी। ना प्यार मोहब्बत की बातें थी, ना ही घंटों मुलाकातें थी। उसकी एक नजर और मुस्कान चेहरे पर आ जानी थी। हर दिन ढलता था और ये एहसास बढ़ता जाता था। वो गुजरता जो पास से तो सांसों में भगदड़ मच जानी थी। जब पहली मोहब्बत का इजहार हुआ तो मौसम चिलचिलाती धूप का और हल्की हवा का झोंका सबसे सुहाना था।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहला प्यार एपिसोड 2। इसमें आखिरी कविता को आवाज दी आरजे सेजल ने। एडिट, रिकॉर्ड, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ए बाबू ले लो ना नारी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
5: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: धर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पसंद है।
1: तो मैं आप त्यों पूछना चाहूं भी, जिस तरह आप अकेली महिला थी तो आपने अपना घर चलाने वास्ता क्या काम कराया?
0: बस यही था मैम, डंगर रख रही 5-7, घी दूध बेचा, अपने बच्चों के पालन पोषण करे, पढ़ाई लिखाई करवाई उनकी, अच्छे स्कूलों में बच्चे पोता पोती अच्छे स्कूलों में पाए हुए हैं, खेती कर रही है अपनी, कुछ ठेके पे दी हुई है, कुछ अपने आप पे खुद कर रही।
1: तो जिस तरह आपने बताया अभी आप खेती भी करी आपने, तो खेती में आपनों क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा?
0: बस समस्या तो मैम यही है अभी अपने, मतलब कोई पानी की दिक्कत हुई, इतनी हुई, पानी बहुत आए, फसलां खराब हुई, जिमीदारों ने खराब कर दी, खुद पानी तोड़ तोड़ कर, मैं कल्ली औरत, ये मेरे देवर का लड़का, ये मेरे साथ में था, मैंने कल्ली सामना करे अपने आप, 4 गायों के आदमियों के साथ।
1: बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया मिसाल आप गौ वास्ता। तो आपनू खेती की जानकारी शुरू में ऐ थी या खेती करने के साथ साथ आई?
0: ऐ थी जी, मतलब कुछ जहाँ की मैं बेटी हूँ वहां भी थोड़ा अपने भाइयों के साथ में गेलो लगी रहूँती, तो फिर यहाँ पे समस्या इतनी आई है मन, फिर यहाँ मैंने यही बात सोची भी ऐसे तो पूरा नहीं पटागा, कुछ खुद अपने आप ते करूंगी तो फिर उसकी वजह से मैं कुछ ऊपर उठूंगी, तो मैंने अपने आप ही खुद थी, कुछ तरीका था, कुछ अंदर रह गेलो गेलो करती रही।
1: तो आपने बताया अभी जिस तरह आपके भाई पीछा खेती करे कराते हैं ना, तो आप उनके साथ पहला खेती करने वास्ते खेतों में जहां थे, और थोड़ी आपने नॉलेज कहाँ थे ली फिर उन पते?
0: बस उन्हीं के पास ही खेतों में गेलो चली जाऊं थी, जितनी कुछ थी नॉलेज भी ऐसे ऐसे कुछ काम करा, जितनी माले डंगर बच्चे का करूं, मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं आ रही, मैं मतलब लगती रही, सारा काम खुद में अपने आप ही करती रही।
1: तो खेती की बात आपने बताई भी, आप खेती कराते जो फसल थी वह खेत में उग जाती तो उसनु बेचने वास्ता बाहर मंडिया में जाना पड़ा था, तो उस वास्ता फिर आपने क्या करा, अपनी फसल मंडी में किस तरह लेकर गए आप बेचने?
0: बस यही मैम, कराए का बंदा देखा ट्रैक्टर पर बाहर ते ठुआई, उसकी देखभाली करी, फिर कराई तेल ले ले बाहर व बकवाई, स्त्रियों मतलब ऐसे काम चलाया अपना।
1: तो आपने बताया अभी मनु अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वास्ता बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, तो आप चलती रही आपने यो साहस कहाँ ते मिलाया, आपने किसनु देख का सीखा भी हाँ मनु रुकना नहीं, मनु तो आगे बढ़ना?
0: बस मैं अपने घर की मैम कमजोरी करका, मतलब ये सोचा ना मैंने भी, मतलब आगे बच्चों के पालन पोषण कैसे करूंगी, किस तरह करूंगी, मैंने खुद ही सोचा ये भी करूंगी तो मतलब कहाँ पैसा हाथ में आएगा, बच्चों के पालन पोषण होंगे, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ होंगी, तो देखो और तो कोई नहीं दे सकता, तो अपने घर से ही मिलागा जो भी मिलागा, मैंने खुद ही अपने आप से ये बात सोची।
1: तो आपने अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा याद हो जो दियो लगे हो भी आज इब तो जिंदगी रुक गई, बस इब नहीं आगे बढ़ सकती, लेकिन फिर आपके अंदर एक हिम्मत आई हो भी नहीं नहीं आगे तो बढ़ना पड़ेगा, कोई ऐसी जिंदगी में कोई घटना घटी हो जो इब तक ही बहुत याद आवा और उसनु याद करके ही आप आज यहां तक पहुंचे?
0: बस घटना तो मैम यही थी भी, घर वाला था उन्होंने नहीं अपना कोई सोचा इस बात के बारे में, बेटा था उन्होंने सोचा इस बात के बारे में, फिर मैंने तो ये सोचा ना भी मान ले अब तो करना पड़ेगा ना ये काम, अब तो बिल्कुल खानी खत्म ही होगी, अब तो रहे ही कुछ नहीं है पल्ला, तो मान ले ऐसे ही मैं मतलब नीचे से आज यहाँ लग पहुंची मैं खुद अपनी हिम्मत से।
1: बहुत ही बढ़िया। तो जोन सी मारी आज की महिलाएं हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो स्त्री अपनी जिंदगी नु चला रही है ना, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष करा भी आज आप यहाँ तक पहुंचे, आपका एक गोमा नाम है, बीरसवीर कौर ने अपनी जिंदगी इस तरह बढ़ाई और इतना संघर्ष करा, तो उन महिलाओं ने आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही है मैम, संदेश तो यही देना, अभी देखो भी मतलब छोटा काम हो, छोटे ते बड़ा हो, चाहे डंगर बच्चे का हो, चाहे खेती का हो, तो करांगे तो आगे चलांगे, जित करने के नहीं तो आगे कैसे चलेंगे, तो हिम्मत करो, हिम्मत करो, एक दूसरे के साथ जुड़ो, पूछो भी कैसे बढ़िया, किस तरह करया, आप कैसे यहाँ लग आई हैं, खुद अपनी हिम्मत दे, हिम्मत नहीं अपनी गेरनी, हिम्मत से उठो।
1: तो आपने अपने बच्चे नु पढ़ाने वास्ता बहुत संघर्ष करया और आज मैं एक अच्छी जगह स्टैंड कर रहे, तो आप उनते क्या उम्मीद रखा या आपकी क्या उम्मीद अपने बच्चे ते भी, वह भी मेरे वास्ता कुछ करा?
0: बस यही मैम भी उम्मीद तो यही है भी, जो मैं आज इनके वास्ते इतना कुछ कर रही भी, मेरा बहुत ऊंचा नाम मेरे पोता पोती करा भी, ना पूरा गर्व भी, मेरा नाम पूरा गांव में, गुआंडों में, मेरे रिश्तेदारों में भी, मेरा नाम मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से मेरा नाम रोशन।

0: करा भी मेरी दादी ने हमारे वास्ते भी यो कुछ करा मेरे पापा के मेरे दादू के जाने के बाद में।
1: बहुत बहुत बढ़िया विचार आपके, आपकी जिंदगी नु देखका और मारी महिलाएं हैं चाहे मारे पुरुष हैं वह भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रसवीर कौर जी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़ने मा और अपनी लाइफ की ये बातें शेयर करने में भी आपने कितना संघर्ष करा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।
1: तो हम जुड़ रहे हैं रसवीर कौर जी की पोती के साथ, राम राम जी।
2: नमस्कार, मेरा नाम वंशिका है, मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से के एक छोटे से गाँव लंडा गाँव से बिलोंग करती हूँ और मैं 12th क्लास में मेडिकल स्ट्रीम से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ।
1: तो वंशिका जी, मैं आपसे यूं पूछना चाहूंगी, जिस तरह आपकी दादी ने इतना संघर्ष करया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, तो आपने अपनी दादी से क्या सीखने को मिला?
2: मुझे अपनी दादी से यही सीखने को मिलता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें ना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उस भगवान के आशीर्वाद से हमें हमेशा उस भगवान को अपने मन में धारण करके चलते रहना चाहिए और किसी भी सिचुएशन से लेट डाउन नहीं होना चाहिए।
1: तो दादी ने इतना संघर्ष करा और दादी की उम्मीद है अभी जो मेरे बच्चे हैं, मेरी पोती पोतियां हैं, वे मेरा नाम रोशन करा। आप अपनी दादी का नाम रोशन करने वास्ते कितना संघर्ष कर रही है और कितनी मेहनत कर रही है?
2: देखो, अभी मैं अपनी पढ़ाई ही कंप्लीट कर रही हूँ बेसिकली, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, जैसे वो सोचते हैं कि उनका उनको मैं प्राउड फील कराऊं, तो मैं उसके लिए अपना 100% देती हूँ। मैं अपने स्कूल में भी पूरा फोकस्ड रहती हूँ। हाँ, बहुत आज के टाइम में बच्चों पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, मैं फोन का कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, पढ़ाई में ही अपना 100% देने का ट्राई करती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं उनके लिए साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और साथ के साथ अपने 12th बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ।
1: बहुत ही बढ़िया वंशिका जी, जो से मारे युवा बच्चे हैं, तो आप उन्होंने क्या संदेश देना चाहेंगी भी जिस तरह अपनी फैमिली की तरफ नहीं देख दे, कई बार अपना जो फैमिली की सिचुएशन हो उसनु नहीं समझ दे मैं, और मतलब अग्गा और काम में चली जा, तो आप उन्होंने क्या संदेश देना चाह भी फैमिली नु अपनी जरूरी समझना चाहिए, जो हमारी फैमिली कह रही उस चीज नु देखना चाहिए?
2: जी बिल्कुल, आजकल लड़के ज्यादातर नशों में इधर मतलब टपरीबाजी करते हैं, घूमते हैं, गलत लड़कियों के पीछे जाते हैं, और लड़कियां भी अपने घर वालों का कोई नहीं कई बार नहीं सोचती, कुछ गलत कामों में पड़ जाती हैं। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि आप अपने घर वालों के बारे में सोचें, जैसे कि अब मेरी घर वालों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जब मेरे पापा की मेरे दादू की डेथ होगी, कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि वो घर वाले थे, उनकी ड्यूटी है, पर नहीं, उन्होंने अपने सारे शौक सब कुछ सेक्रीफाइस करके हमें इतना कुछ दिया। कुछ भी बात थी वो हम मुंह से निकालते बाद में, वो चीज़ पहले पूरी वो पहले करते हैं, तो उस सबको ध्यान में रखे हमें इनका नाम रोशन करने के लिए सोचना चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार आपके। तो रेडियो वितस्ता, रेडियो वितस्ता के परिवार की ओर से आपनों बहुत शुभकामनाएं, और जो आपने सोच रखे अपनी लाइफ में मैं एक डॉक्टर बनूं, तो आप एक अच्छा डॉक्टर बना, अपनी दादी का नाम रोशन करा और इस गांव का नाम रोशन करा, ताकि आपनों और कोई जाना भी डॉक्टर वंशिका आज गाँव मैरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी और लेके आए हम आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: मक्का की 15 जुलाई तक बिजाई करें, संकर व बायो फोर्टिफाइड किस्में अपनाएं, 4 से 5 बार करें मिट्टी की जुताई, 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज डालें। मक्का की खेती के लिए रेतीली दोमट व दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले खेतों का चयन करें, 4 से 5 जुताई कर 2 बार सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में ढेले ना रहे। मक्का की बिजाई केवल ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी की निकासी हो सके। मक्का फसल की बिजाई मध्य जुलाई तक पूरी कर लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि सामान्य मक्का की लंबी व मध्यम अवधि के सिफारिश शुदा एकल संकर किस्में और बायो फोर्टिफाइड मक्का की पूसा MH4, पूसा HQPS1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPS5 इम्प्रूव्ड, HQPS1, HQPS4 और HQPS5 संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। टेम्पोट्रियम लेडियम 42 SC 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिजाई से पहले कर ले बीज उपचार। 1 एकड़ खेत के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मक्का में फॉल आर्मीवर्म फ्रॉ सर्वाधिक हानिकारक कीट है। फ्रा की रोकथाम के लिए क्लोरोट्रॉनरी पोल 19.8, थाइमेथो किस्म 19.8 अनुपात कीटनाशी द्वारा 6 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से शाम को बीज उपचार करें व सुबह बिजाई करें। इससे दीमक व तना छेदक की रोकथाम भी हो जाएगी। फसल की बीमारियों से बचाने के लिए थेरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बिजाई से 4 से 5 घंटे पहले उपचारित करें। बिजाई का तरीका, पूर्व पश्चिम दिशा में मेड बनाकर मेड के दक्षिण दिशा में उपचारित बीज से 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। बाद में आधा खुड की ऊंचाई तक पानी लगाने से जमाव ज्यादा व जल्दी होता है। बिजाई यदि न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड विधि का उपयोग करके की जाए तो जमाव अधिक होता है व पानी को भी 30 से 35 अनुपात की बचत रहती है। खाद व उर्वरक। ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 60 क्विंटल प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालें। सामान्य दिशाओं में 50 किलोग्राम DAP, 40 किलोग्राम MOP व 37 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बिजाई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए 600 ग्राम एस्ट्रोजन 50 WP के 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। इसका पता लगाने के लिए खेत में 5 फेरोमोन पिंजरा प्रति एकड़ के दर से बिजाई के बाद लगाएं। क्लोरोनेट्रीप्रोनोल 18.5 SC 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या सैनिटोराम SC 100 मिलीलीटर का 200 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करें।
1: घर पर पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करें, बढ़ेगा दूध उत्पाद। मौसम के अनुसार आहार देने से स्वस्थ रहेंगे पशु। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध और मुनाफा लेने के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संतुलित पशु आहार कंपाउंड फीड किसानों के लिए एक सुविधाजनक किंतु अपेक्षाकृत महंगा विकल्प है। डॉक्टर सुजॉय खन्ना लुवास ने बताया कि पशुपालक आसानी से सस्ता और 100% शुद्ध संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध में फैट और SNF की मात्रा भी शानदार तरीके से बढ़ेगी। सामग्री और सही अनुपात। अनाज 35 से 40 किलो, मक्का, जो गेहूं या बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम के अनुसार अनाज बदल सकते हैं, जैसे गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में बाजरा गर्माहट देता है। खल 25 से 30 किलो, प्रोटीन की पूर्ति के लिए सरसों की खल, बिनोला, कपास या मूंगफली की खल लें। चोकर और चूनी 20 से 25 किलो, गेहूं का चोकर और चना, उड़द या मूंग की दाल की चूनी छिलका पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होते हैं और फाइबर की कमी पूरी करते हैं। साधारण नमक 1 किलो, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पशु की भूख बढ़ाता है। तैयार करने की सही विधि। अनाज को बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसने के बजाय दलिया पिसवाएं। खिलाने की मात्रा और सावधानियां। एक स्वस्थ पशु को उसके शरीर के रखरखाव के लिए रोजाना 1.5 से 2 किलो दाना चाहिए। अमरूद का साइलेंट किलर है फल मक्खी, बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप है फायदेमंद। बारिश सीजन में फल के छिलके में अंडे देकर फसल खराब करती है मक्खी। अमरूद के बरसाती फल को फल मक्खी प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्वावा अमरूद भूना में किसानों को जागरूक करने के लिए फल मक्खी ट्रैपों में नए लीवर लगाए गए। प्रदेश में 17,448 हेक्टेयर में अमरूद की फसल है। पिछले साल 21,228 मेट्रिक टन उत्पाद हुआ था। प्रदेश में अमरूद की खेती हिसार, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व यमुनानगर में की जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक फल मक्खी का प्रभाव रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि फल मक्खी अमरूद, आम, पपीता, नींबू की फसलों का प्रमुख कीट है। मादा मक्खी फल के छिलके में अंडे देती है। अंडों से निकले कीड़े फल के अंदर गूदा खा जाते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं व बाजार में गुणवत्ता घट जाती है। इससे 30% से 80% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध हैं। लूअर की कीमत 35 से 100 रुपए प्रति पीस या ब्रांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी यह किफायती दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। 1 एकड़ में नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक ट्रैप लूअर किट की कीमत इससे अधिक भी हो सकती है। किसानों को उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। फल मक्खी की समय रखते पहचान हो जाती है। कीट की संख्या बढ़ने से पहले नियंत्रण संभव होता है। फलों का नुकसान और गिरावट कम होती है। कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटती है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाले फल तैयार करने में मदद मिलती है।
0: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपका लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप कृपया हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हम उस जानकारी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
0: नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz, Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
4: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: अजमेर, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد.

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेडलेट डिपोजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सब से एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मींस ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी इसके भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जयसिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: की दालच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सरगम। सभी दोस्तों को किरनी का नमस्कार। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए हुए गाने के साथ, जिसको म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और फिल्म का नाम है अवतार।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको अपने संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है लोफर और इस गाने को अपनी आवाज दी है आशा भोसले ने।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म सच्चाई का गाना, जिसके बोल लिखे है मजरू सुल्तानपुरी ने और जिसे अपने संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और अपनी खूबसूरत आवाजों में गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

अब पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम। आप पेश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने फिल्म बगावत से, और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है खयाम के म्यूजिक दिया हुआ, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है शंकर जय किशन का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं जलाल मुरादाबादी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है बरसात।

अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी और मुकेश के गाए हुए गाने से, जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिए। नंबर है 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6, पेश किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों।

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

इस करवा में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

आप सुन रहे थे रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब समाप्त हो गए। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।